ये खबरें NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। अब मजीद खबरें समाप्त फरमाइए। जापानी हुकूमत ने कुमामोतो में गुज़श्ता हफ्ते के ताकतवर जलजले से मुतासरा कम्युनिटीज़ की फौरी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अपने हंगामी फंड से 24 बिलियन जन से ज़्यादा के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। मंगल के काबीना इजलास में रिजर्व फंड से तकरीबन 153 मिलियन डॉलर मालियत की रकम खर्च करने की मंजूरी दी गई।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समय अनुसार 6 अगस्त बृहस्पतिवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वरुण तोमर से सुने समाचार। हिरोशिमा में बृहस्पतिवार को अणु बमबारी की 81वीं बरसी पर वार्षिक शांति सभा आयोजित की गई। जापान भर में लोग पीड़ितों की याद में मौन प्रार्थनाएं कर रहे हैं। 1945 की सुबह 8:15 बजे अमेरिका द्वारा बम गिराए जाने पर हिरोशिमा सन्नाटे में डूब गया था। विस्फोट से उत्पन्न ताप और विकिरण ने शहर को तबाह कर दिया था और साल खत्म होने तक अनुमानित 1,40,000 लोगों की मौत हो गई थी। जीवित बचे लोगों में से कई विकिरण के संपर्क में आने से कैंसर और अन्य संबंधित बीमारियों से ग्रस्त हो गए। प्रधानमंत्री ताकाइची सानाए और रिकॉर्ड 121 देशों व क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने बृहस्पतिवार की सभा में भाग लिया। हिरोशिमा महापौर मात्सुई काजुमी ने शांति उद्यान के स्मारक पर अणु बम पीड़ितों के नामों की ताज़ा सूची रखी। पिछले 12 महीनों में जिन 4,393 लोगों की मृत्यु हुई या जिनकी मृत्यु की पुष्टि हुई, उनके नाम जोड़ने के बाद अब इस सूची में कुल 353,639 नाम हैं। मात्सुई ने परमाणु अस्त्र उन्मूलन का आह्वान करते हुए एक शांति घोषणा पत्र प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, विश्व के नीति निर्धारकों से नागरिक समाज परमाणु अस्त्रों के तत्काल उन्मूलन की मांग करता है। आप हमें कब तक निराश करते रहेंगे? आप निश्चित रूप से जानते हैं कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल मानवता के लिए विनाशकारी साबित होगा और परमाणु अप्रसार व निरस्त्रीकरण की दिशा में प्रगति केवल बहुपक्षीय प्रयासों से संभव है। परमाणु हथियार संपन्न देशों के नेतागण, परमाणु निरस्त्रीकरण की प्राथमिक जिम्मेदारी आप ही की है। आपको निश्चित रूप से मिसाल पेश करने की जरूरत को समझना चाहिए। प्रधानमंत्री ताकाइची ने भी सभा को संबोधित करते हुए कहा, जापान 3 गैर परमाणु सिद्धांतों का दृढ़तापूर्वक पालन करता है और युद्ध में अणु बमबारी झेलने वाला एकमात्र देश होने के नाते वो परमाणु अस्त्र मुक्त विश्व की दिशा में निरंतर प्रयासरत रहेगा। यही हमारी मुहिम है। आज वैश्विक सुरक्षा का माहौल लगातार गंभीर होता जा रहा है। हाल ही में परमाणु अप्रसार संधि समीक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें हमने देखा कि परमाणु अस्त्र मुक्त विश्व की राह आसान नहीं है, लेकिन यही कारण है कि हमें आगे बढ़ते रहना होगा। जापान सरकार ने अप्रैल 2027 से 2 साल के लिए खाद्य पदार्थों पर उपभोग कर को घटाकर 1% करने का निर्णय लिया है। इस समय ये कर 8% है। बुधवार को कैबिनेट की असाधारण बैठक में इस कटौती को मंजूरी दी गई। उपभोग कर को घटाकर 1% करने के अलावा निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोगों को अलग अलग भत्ते भी दिए जाएंगे, ताकि उपभोग कर को एक तरह से शून्य बनाया जा सके। नीति में कहा गया है कि सरकार आवश्यक धनराशि जुटाने के लिए सभी खर्च

दृष्टिकोण को ध्यान में रखना चाहिए और जनचिंताएं दूर करने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को वैकल्पिक राजस्व स्रोत स्पष्ट करने चाहिए और अपने वायदे के अनुसार कर कटौती का ये उपाय 2 साल बाद वापस ले लेना चाहिए।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। कुमामोतो प्रीफेक्चर की सरकार का कहना है कि उसने 28 जुलाई को आए शक्तिशाली भूकंप में 38 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है। प्रीफेक्चर के आपदा प्रतिक्रिया मुख्यालय ने आंकड़े जारी किए हैं जिनमें बताया गया है कि 7.1 की तीव्रता के भूकंप से बृहस्पतिवार सुबह 7:30 बजे तक कितने नुकसान की पुष्टि की जा चुकी थी। मृतकों की संख्या में रविवार से कोई बदलाव नहीं है। अधिकारियों के अनुसार इनमें से एक की मौत आपदा पश्चात के कारणों से होने का संदेह है। आंकड़ों से पता चलता है कि प्रीफेक्चर के 130 आश्रय स्थलों में 6,899 लोग रह रहे हैं। ईरान और ओमान होर्मुज जलडमरू मध्य में नौवहन मार्ग पर समझौते के करीब पहुंचने वाले हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने बुधवार को कहा कि संयुक्त वक्तव्य को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने मार्ग के भौगोलिक निर्देशांकों पर सहमति बना ली है, बशर्ते कि कोई तीसरा पक्ष इस प्रक्रिया में बाधा न डाले। बागई ने कहा कि ईरान ने तकनीकी सुरक्षा और अन्य मुद्दों की समीक्षा की है। उन्होंने होर्मुज के बंद होने के लिए अमरीका और इसराइल को दोषी ठहराते हुए कहा कि ये उनकी सैन्य आक्रामकता का परिणाम है। प्रवक्ता ने कहा कि ईरान और ओमान के बीच ये समझौता जलडमरू मध्य में नौवहन सुरक्षा अकेले सुनिश्चित नहीं कर सकता क्योंकि अमरीका अब भी खतरा बना हुआ है। अमरीका चीन पर लगने वाले व्यापार प्रतिबंधों का दायरा बढ़ा रहा है। इसके जवाब में चीन के अधिकारियों का कहना है कि वो भी जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। पेचिंग ने घोषणा की है कि वो अमरीका भेजे जाने वाले ड्रोन विमानों पर निर्यात नियंत्रण को और कड़ा कर रहा है। अधिकारियों ने बुधवार को इन नियमों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि ड्रोन विमानों, प्रमुख घटकों और संबंधित प्रौद्योगिकी सहित ऐसी निर्यात वस्तुओं जिनका नागरिक और सैन्य दोहरा उपयोग किया जा सकता है, उनकी कड़ी समीक्षा की जाएगी। पेचिंग ने 6 अमरीकी संगठनों पर भी प्रतिबंध लगाए हैं। चीन का आरोप है कि ये संगठन उसके शिनचियांग उइघुर स्वायत्त क्षेत्र पर अवैध अमरीकी प्रतिबंधों का समर्थन करते हैं। इन संगठनों को चीनी संगठनों और व्यक्तियों के साथ व्यापार करने से प्रतिबंधित किया गया है। चीनी वाणिज्य मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने इस बात पर जोर दिया कि ये उपाय कुल मिलाकर संयमित हैं और उन्होंने अमरीका से अपने प्रतिबंध वापस लेने का आग्रह किया। इसी के साथ एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
1: ये है एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें एनएचके वर्ल्ड जापान।

0: NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 23वें पाठ में अपनी पसंद बताना सीखेंगे।
1: ताम वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा है। वो होक्काइडो घूमकर टोक्यो वापस आ चुकी है। टोक्यो में वो अपने दोस्तों

0: सायाका और माइक के साथ एक कैट कैफे में आई है। माइक अमरीकी है और जापान की पॉप संस्कृति के बारे में बहुत कुछ जानता है।
1: कैट कैफे ऐसी दुकानें होती हैं जहां आप चाय या कॉफी का आनंद लेते हुए बिल्लियों के साथ खेल सकते हैं।
0: तो आइए सुनते हैं 23वें पाठ की बातचीत।
2: कवाई, मिन्ना गोहान ओ तबेते इमासु।
3: होंतो नी कवाई ने। ओइदे ओइदे। वाताशि वा कोनो को गा सुकी।
4: 私はこの猫が好きです。
5: 猫カフェってリラックスできるよね。
4: 本当ですね。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं। पहले ताम ने बिल्लियों को देखते हुए कहा,
2: कवाई,
0: कितनी प्यारी हैं।
2: मिन्ना गोहान ओ तबेते इमासु।
0: सब खाना खा रही हैं।
1: फिर आयाका बोली,
3: होंतो नी कवाई ने।
0: सचमुच प्यारी हैं।
1: उसके बाद आयाका ने बिल्लियों को आवाज लगाई,
3: ओइदे ओइदे,
0: इधर आओ इधर आओ।
1: आयाका ने अपने पास आई बिल्ली को पुचकारते हुए कहा,
3: वाताशि वा कोनो को गा सुकी,
0: मुझे ये वाली पसंद है।
1: फिर ताम ने दूसरी बिल्ली को सहलाते हुए कहा,
4: वाताशि वा कोनो नेको गा सुकी देसु,
0: मुझे ये बिल्ली पसंद है।
1: माइक भी माहौल का आनंद ले रहा था। वो बोला,
5: नेको काफे ते रिलैक्स देखि रियो ने।
1: कैट कैफे आकर बहुत सुकून मिलता है ना?
0: तब ताम ने जवाब दिया,
4: होंतो देसु ने।
0: सही कहा।
1: कैट कैफे में आमतौर पर अलग अलग तरह की बिल्लियां होती हैं। आप भी उनमें से अपनी मनपसंद बिल्ली के साथ खेल सकते हैं।
0: आज का मुख्य वाक्य है,
4: वाताशि वा कोनो नेको गा सुकी देसु,
0: यानी मुझे ये बिल्ली पसंद है। ये वाक्य याद करके आप अपनी पसंद बता सकेंगे।
1: इस वाक्य में
6: वाताशि
1: का अर्थ है मैं और उसके बाद लगा है वा, जो विषय सूचक कारक है। उसके बाद आया है
6: नेको
1: यानी बिल्ली।
6: कोनो नेको
1: का अर्थ है ये बिल्ली।
0: आगे है
6: स्की देस,
0: जिसमें से
6: स्की
0: एक ना विशेषण है और उसका मतलब है पसंद।
1: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि जो चीज पसंद हो उसके नाम के बाद कारक गा लगाते हैं और उसके बाद बोलते हैं
6: स्की देसु।
1: अगर आपको बिल्लियां यानी
6: नेको
1: पसंद हैं तो वाक्य बनेगा
6: नेको गा स्की देसु।
0: ध्यान रखिएगा कि नेको ओ स्की देसु बोलना सही नहीं है।
6: स्की देसु
0: का
6: स्की
0: यानी पसंद क्रिया नहीं है, ना विशेषण है। विशेषण जिस चीज की विशेषता बताता है उसके नाम के बाद कारक ओ नहीं गा लगाया जाता है।
1: अगर हम आयाका की पंक्ति पर ध्यान दें तो उसने भी कहा था वाताशि वा कोनो को गा सुकी, जिसका अर्थ है मुझे ये वाली पसंद है।
0: करीबी मित्र से बात करते समय आप अंत का
6: देस
0: छोड़ सकते हैं और
6: स्की देस
0: की जगह सिर्फ
6: स्की
0: बोल सकते हैं।
1: एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि ताम और आयाका दोनों ने अपने वाक्य में वाताशि वा यानी मैं लगाया, लेकिन हम आपको पिछले पाठों में बता चुके हैं कि अगर संदर्भ स्पष्ट हो तो ये शब्द बोलने की जरूरत नहीं होती है।
0: यहाँ ताम और आयाका अपनी अपनी पसंद बता रही हैं और इस बात पर जोर दे रही हैं कि उनकी पसंद एक दूसरे से अलग है। जैसे ताम ने कहा,
6: वाताशि वा कोनो नेको गा सुकी देसु,
0: यानी मुझे ये बिल्ली पसंद है। यहाँ उसने खास तौर से कहा
6: वाताशि वा।
1: तो अब उच्चारण का अभ्यास करते हैं, सुनिए और दोहराइए।
6: स्की देसु, कोनो नेको गा सुकी देसु, वाताशि वा कोनो नेको गा सुकी देसु।
0: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें मनपसंद खाने की चीज की बात हो रही है।
7: तबेमोनो वा नानी गा सुकी देसु का?
8: सुशी गा सुकी देसु।
1: इस बातचीत में पहले पुरुष ने पूछा,
7: 食べ物は何が好きですか？
1: खाने में क्या पसंद है?
0: यहाँ
6: तबे मोनो
0: का अर्थ है खाना या खाने की चीज। उसके बाद लगा है विषय सूचक कारक वा।
6: नानी
0: एक प्रश्नवाचक शब्द है जिसका अर्थ है क्या। तो
6: नानी गा स्की डेस्का
0: का अर्थ है क्या पसंद है।
1: महिला ने उत्तर दिया
3: सुशी गा स्की डेस।
0: सुशी पसंद है।
1: सुशी एक जापानी व्यंजन है जो पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो रहा है।
0: तो अब ये बातचीत दोबारा सुनिए और उत्तर दोहराइए।
6: तबेमोनो वा नानी गा स्की डेस्का? सुशी गा स्की डेस।
1: अब वाक्य बनाने का अभ्यास करते हैं। मान लीजिए आपको लोकप्रिय जापानी संगीत यानी जे पॉप पसंद है, तो ये बात कैसे बताएंगे? जे पॉप को जापानी में कहते हैं
6: जे पॉप।
1: तो कोशिश कीजिए।
3: जे पॉप गा स्की देस।
0: अब मान लीजिए आपको जापानी चित्र कथाएं पसंद हैं, जिन्हें जापानी भाषा में कहते हैं
6: मांगा।
0: तो अपनी पसंद बताने की कोशिश कीजिए।
7: मांगा गा स्की देस।
1: अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो ताम की पंक्ति है। आप भी याद कर लीजिए।
3: होंतो देस ने।
6: होंतो
0: है
6: होंतो
0: यानी सही कहा का लघु रूप।
6: होंतो देस ने
0: का भी मतलब है सही कहा। इस वाक्य का इस्तेमाल किसी के विचार या राय पर सहमति दिखाने के लिए किया जाता है।
1: तो आप भी सुनिए और साथ साथ बोलने का अभ्यास कीजिए।
6: होंतो देस ने।
0: और अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
2: कवाई मीना गोहान ओ तबेते इमास।
3: होंतो नी कवाई ने। ओइदे ओइदे। वतशी वा कोनो को गा स्की। वतशी वा कोनो नेको गा स्की देस।
5: नेको काफे त्ते रिलैक्स देकिरु यो ने।
3: होंतो देस ने।
5: バイクと一緒にポップカルチャ
1: ー。अब हम लेकर आए हैं अंश माइक के साथ पॉप संस्कृति, जिसमें आज हम बताएंगे जापान में तरह तरह के दिलचस्प कैफे के बारे में।
0: जापान में ऐसे बहुत सारे कैफे बन गए हैं जहां केवल खाना पीना ही मुख्य आकर्षण नहीं है। ऐसा ही एक उदाहरण है कैट कैफे, जिसका आज के पाठ में जिक्र है।
1: जिन लोगों को उल्लू या खरगोश पसंद है, वे उल्लू या खरगोश कैफे में जा सकते हैं। आपकी जापानी भाषा बहुत अच्छी ना भी हो, तो भी आप ऐसी जगह नए दोस्त बना सकते हैं, क्योंकि वहां आए सारे ग्राहकों की रुचि एक जैसी होती है।
0: मेड कैफे थोड़े अलग होते हैं। वहां खाना परोसने वाली लड़कियां फ्रेंच मेड जैसे कपड़े पहनती हैं और ग्राहकों को मालिक कहकर संबोधित करती हैं।
1: इसके अलावा जापान में आशी यू कैफे भी हैं, जहां आप गर्म पानी में पैर डालकर बैठ सकते हैं। प्लैनेटेरियम यानी तारामंडल कैफे भी हैं, जहां आप चाय पीते हुए सितारों की दुनिया में खो सकते हैं।
0: इसके अलावा एनीमे और गेम्स पर आधारित कैफे तो हैं ही।
1: तो आप भी जापान में अपना मनपसंद कैफे जरूर ढूंढिएगा।
0: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
1: अगले पाठ में अपनी नापसंद बताना सीखेंगे। तब तक के लिए सायोनारा।

ये NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 6 अगस्त बृहस्पतिवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वरुण तोमर से सुने समाचार। हिरोशिमा में बृहस्पतिवार को अणु बमबारी की 81वीं बरसी पर वार्षिक शांति सभा आयोजित की गई। जापान भर में लोग पीड़ितों की याद में मौन प्रार्थनाएं कर रहे हैं। 1945 की सुबह 8:15 बजे अमेरिका द्वारा बम गिराए जाने पर हिरोशिमा सन्नाटे में डूब गया था। विस्फोट से उत्पन्न ताप और विकिरण ने शहर को तबाह कर दिया था और साल खत्म होने तक अनुमानित 1,40,000 लोगों की मौत हो गई थी। जीवित बचे लोगों में से कई विकिरण के संपर्क में आने से कैंसर और अन्य संबंधित बीमारियों से ग्रस्त हो गए। प्रधानमंत्री ताकाइची सानाए और रिकॉर्ड 121 देशों व क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने बृहस्पतिवार की सभा में भाग लिया। हिरोशिमा महापौर मात्सुई काजुमी ने शांति उद्यान के स्मारक पर अणु बम पीड़ितों के नामों की ताज़ा सूची रखी। पिछले 12 महीनों में जिन 4,393 लोगों की मृत्यु हुई या जिनकी मृत्यु की पुष्टि हुई उनके नाम जोड़ने के बाद अब इस सूची में कुल 353,639 नाम हैं। मात्सुई ने परमाणु अस्त्र उन्मूलन का आह्वान करते हुए एक शांति घोषणा पत्र प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, विश्व के नीति निर्धारकों से नागरिक समाज परमाणु अस्त्रों के तत्काल उन्मूलन की मांग करता है। आप हमें कब तक निराश करते रहेंगे? आप निश्चित रूप से जानते हैं कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल मानवता के लिए विनाशकारी साबित होगा और परमाणु अप्रसार व निरस्त्रीकरण की दिशा में प्रगति केवल बहुपक्षीय प्रयासों से संभव है। परमाणु हथियार संपन्न देशों के नेतागण, परमाणु निरस्त्रीकरण की प्राथमिक जिम्मेदारी आप ही की है। आपको निश्चित रूप से मिसाल पेश करने की जरूरत को समझना चाहिए। प्रधानमंत्री ताकाइची ने भी सभा को संबोधित करते हुए कहा, जापान 3 गैर परमाणु सिद्धांतों का दृढ़तापूर्वक पालन करता है और युद्ध में अणु बमबारी झेलने वाला एकमात्र देश होने के नाते वो परमाणु अस्त्र मुक्त विश्व की दिशा में निरंतर प्रयासरत रहेगा। यही हमारी मुहिम है। आज वैश्विक सुरक्षा का माहौल लगातार गंभीर होता जा रहा है। हाल ही में परमाणु अप्रसार संधि समीक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें हमने देखा कि परमाणु अस्त्र मुक्त विश्व की राह आसान नहीं है, लेकिन यही कारण है कि हमें आगे बढ़ते रहना होगा। जापान सरकार ने अप्रैल 2027 से 2 साल के लिए खाद्य पदार्थों पर उपभोग कर को घटाकर 1% करने का निर्णय लिया है। इस समय ये कर 8% है। बुधवार को कैबिनेट की असाधारण बैठक में इस कटौती को मंजूरी दी गई। उपभोग कर को घटाकर 1% करने के अलावा निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोगों को अलग अलग भत्ते भी दिए जाएंगे ताकि उपभोग कर को एक तरह से शून्य बनाया जा सके। नीति में कहा गया है कि सरकार आवश्यक धनराशि जुटाने के लिए सभी खर्च और राजस्व स्रोतों की समीक्षा करेगी। वो घाटे की भरपाई के लिए बंधपत्रों पर निर्भर नहीं रहेगी। सरकार वित्त वर्ष 2027 का बजट तैयार करने के दौरान किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहती है। प्रधानमंत्री ताकाइची सानाए ने बुधवार को पत्रकारों से कहा, हम सभी विशेष खातों, सरकारी निधियों और इसी तरह की चीज़ों की नए सिरे से समीक्षा करेंगे। मुझे विश्वास है कि इन सुधारों के माध्यम से हम आवश्यक धनराशि जुटा सकते हैं। जापान कारोबारी महासंघ केईदान रेन के प्रमुख त्सुई योशिनोबु ने पत्रकारों को बताया कि कर कटौती से सामाजिक सुरक्षा निधि पर असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार को आम जनता के

0: न्यायालय ने आंकड़े जारी किए हैं जिनमें बताया गया है कि 7.1 की तीव्रता के भूकंप से बृहस्पतिवार सुबह 7:30 बजे तक कितने नुकसान की पुष्टि की जा चुकी थी। मृतकों की संख्या में रविवार से कोई बदलाव नहीं है। अधिकारियों के अनुसार इनमें से एक की मौत आपदा पश्चात के कारणों से होने का संदेह है। आंकड़ों से पता चलता है कि प्रीफेक्चर के 130 आश्रय स्थलों में 6,899 लोग रह रहे हैं। ईरान और ओमान होर्मुज जलडमरू मध्य में नौवहन मार्ग पर समझौते के करीब पहुंचने वाले हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने बुधवार को कहा कि संयुक्त वक्तव्य को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने मार्ग के भौगोलिक निर्देशांकों पर सहमति बना ली है, बशर्ते कि कोई तीसरा पक्ष इस प्रक्रिया में बाधा न डाले। बागई ने कहा कि ईरान ने तकनीकी सुरक्षा और अन्य मुद्दों की समीक्षा की है। उन्होंने होर्मुज के बंद होने के लिए अमरीका और इसराइल को दोषी ठहराते हुए कहा कि ये उनकी सैन्य आक्रामकता का परिणाम है। प्रवक्ता ने कहा कि ईरान और ओमान के बीच ये समझौता जलडमरू मध्य में नौवहन सुरक्षा अकेले सुनिश्चित नहीं कर सकता, क्योंकि अमरीका अब भी खतरा बना हुआ है। अमरीका चीन पर लगने वाले व्यापार प्रतिबंधों का दायरा बढ़ा रहा है। इसके जवाब में चीन के अधिकारियों का कहना है कि वो भी जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। पेचिंग ने घोषणा की है कि वो अमरीका भेजे जाने वाले ड्रोन विमानों पर निर्यात नियंत्रण को और कड़ा कर रहा है। अधिकारियों ने बुधवार को इन नियमों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि ड्रोन विमानों, प्रमुख घटकों और संबंधित प्रौद्योगिकी सहित ऐसी निर्यात वस्तुओं जिनका नागरिक और सैन्य दोहरा उपयोग किया जा सकता है, उनकी कड़ी समीक्षा की जाएगी। पेचिंग ने 6 अमरीकी संगठनों पर भी प्रतिबंध लगाए हैं। चीन का आरोप है कि ये संगठन उसके शिनचियांग उइघुर स्वायत्त क्षेत्र पर अवैध अमरीकी प्रतिबंधों का समर्थन करते हैं। इन संगठनों को चीनी संगठनों और व्यक्तियों के साथ व्यापार करने से प्रतिबंधित किया गया है। चीनी वाणिज्य मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने इस बात पर जोर दिया कि ये उपाय कुल मिलाकर संयमित हैं, और उन्होंने अमरीका से अपने प्रतिबंध वापस लेने का आग्रह किया। इसी के साथ एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
1: ये है एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें एनएचके वर्ल्ड जापान।

0: NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 23वें पाठ में अपनी पसंद बताना सीखेंगे।
1: ताम वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा है। वो होक्काइडो घूमकर टोक्यो वापस आ चुकी है। टोक्यो में वो अपने दोस्तों आयाका और माइक के साथ एक कैट कैफे में आई है। माइक अमरीकी है और जापान की पॉप संस्कृति के बारे में बहुत कुछ जानता है।
0: कैट कैफे ऐसी दुकानें होती हैं जहां आप चाय या कॉफी का आनंद लेते हुए बिल्लियों के साथ खेल सकते हैं।
1: तो आइए सुनते हैं 23वें पाठ की बातचीत।
2: みんなご飯を食べています。本当に可愛いね。おいでおいで。私はこの子が好き。私はこの猫が好きです。猫カフェってリラックスできるよね。
3: 本当ですね。

0: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं। पहले ताम ने बिल्लियों को देखते हुए कहा,
1: कवाई,
2: कितनी प्यारी हैं।
1: मीना गोहान वो तबेते हिमास,
2: सब खाना खा रही हैं।
0: फिर आया का बोली,
1: होंतो नी कवाई ने,
2: सचमुच प्यारी हैं।
0: उसके बाद आयाका ने बिल्लियों को आवाज लगाई,
1: ओइदे ओइदे,
2: इधर आओ इधर आओ।
0: आयाका ने अपने पास आई बिल्ली को पुचकारते हुए कहा,
1: वाताशी वा कोनो को गा सुकी,
2: मुझे ये वाली पसंद है।
0: फिर ताम ने दूसरी बिल्ली को सहलाते हुए कहा,
1: वाताशी वा कोनो नेको गा सुकी देस,
2: मुझे ये बिल्ली पसंद है।
0: माइक भी माहौल का आनंद ले रहा था। वो बोला,
3: नेको कैफे ते रिलैक्स देकिरियो ने,
0: कैट कैफे आकर बहुत सुकून मिलता है ना।
2: तब ताम ने जवाब दिया,
1: होंतो देस ने,
2: सही कहा।
0: कैट कैफे में आमतौर पर अलग अलग तरह की बिल्लियां होती हैं। आप भी उनमें से अपनी मनपसंद बिल्ली के साथ खेल सकते हैं।
2: आज का मुख्य वाक्य है,
1: वाताशी वा कोनो नेको गा सुकी देस,
2: यानी मुझे ये बिल्ली पसंद है। ये वाक्य याद करके आप अपनी पसंद बता सकेंगे।
0: इस वाक्य में
4: वाताशी
0: का अर्थ है मैं, और उसके बाद लगा है वा, जो विषय सूचक कारक है। उसके बाद आया है
4: नेको,
0: यानी बिल्ली।
4: कोनो नेको
0: का अर्थ है ये बिल्ली।
2: आगे है
4: स्की देस,
2: जिसमें से
4: स्की
2: एक ना विशेषण है और उसका मतलब है पसंद।
0: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि जो चीज पसंद हो उसके नाम के बाद कारक गा लगाते हैं और उसके बाद बोलते हैं
4: स्की देस।
0: अगर आपको बिल्लियां यानी
4: नेको
0: पसंद हैं तो वाक्य बनेगा
4: नेको गा स्की देस।
2: ध्यान रखिएगा कि नेको ओ स्की देस बोलना सही नहीं है।
4: स्की देस
2: का
4: स्की
2: यानी पसंद क्रिया नहीं है, ना विशेषण है। विशेषण जिस चीज की विशेषता बताता है उसके नाम के बाद कारक ओ नहीं गा लगाया जाता है।
0: अगर हम आयाका की पंक्ति पर ध्यान दें तो उसने भी कहा था वाताशी वा कोनो को गा सुकी, जिसका अर्थ है मुझे ये वाली पसंद है।
2: करीबी मित्र से बात करते समय आप अंत का
4: देस
2: छोड़ सकते हैं और
4: स्की देस
2: की जगह सिर्फ
4: स्की
2: बोल सकते हैं।
0: एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि ताम और आयाका दोनों ने अपने वाक्य में वाताशी वा यानी मैं लगाया, लेकिन हम आपको पिछले पाठों में बता चुके हैं कि अगर संदर्भ स्पष्ट हो तो ये शब्द बोलने की जरूरत नहीं होती है।
2: यहाँ ताम और आयाका अपनी अपनी पसंद बता रही हैं और इस बात पर जोर दे रही हैं कि उनकी पसंद एक दूसरे से अलग है। जैसे ताम ने कहा
4: वाताशी वा कोनो नेको गा सुकी देस,
2: यानी मुझे ये बिल्ली पसंद है। यहाँ उसने खास तौर से कहा
4: वाताशी वा।
0: तो अब उच्चारण का अभ्यास करते हैं, सुनिए और दोहराइए।
4: सुकी देस, कोनो नेको गा सुकी देस, वाताशी वा कोनो नेको गा सुकी देस।
2: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें मनपसंद खाने की चीज की बात हो रही है।
5: तबेमोनो वा नानी गा सुकी देसु का?
1: सुशी गा सुकी देसु।
0: इस बातचीत में पहले पुरुष ने पूछा
5: तबेमोनो वा नानी गा सुकी देसु का?
0: खाने में क्या पसंद है?
2: यहाँ
4: तबेमोनो
2: का अर्थ है खाना या खाने की चीज। उसके बाद लगा है विषय सूचक कारक वा।
4: नानी
2: एक प्रश्नवाचक शब्द है जिसका अर्थ है क्या। तो
4: नानी गा सुकी देसु
2: का अर्थ है क्या पसंद है।
0: महिला ने उत्तर दिया
1: सुशी गा सुकी देसु,
2: सुशी पसंद है।
0: सुशी एक जापानी व्यंजन है जो पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो रहा है।
2: तो अब ये बातचीत दोबारा सुनिए और उत्तर दोहराइए।
4: तबेमोनो वा नानी गा सुकी देसु का? सुशी गा सुकी देसु।
0: अब वाक्य बनाने

0: का अभ्यास करते हैं। मान लीजिए आपको लोकप्रिय जापानी संगीत यानी जे पॉप पसंद है, तो ये बात कैसे बताएंगे? जे पॉप को जापानी में कहते हैं
1: जे पॉप।
0: तो कोशिश कीजिए।
2: जे पॉप गा सकी देस।
3: अब मान लीजिए आपको जापानी चित्र कथाएं पसंद हैं, जिन्हें जापानी भाषा में कहते हैं
1: मांगा।
3: तो अपनी पसंद बताने की कोशिश कीजिए।
4: मांगा गा सकी देस।
0: अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो ताम की पंक्ति है। आप भी याद कर लीजिए।
5: होंतो देसु ने।
1: होंतो
3: है
1: होंतो,
3: यानी सही कहा का लघु रूप।
1: होंतो देसु ने
3: का भी मतलब है सही कहा। इस वाक्य का इस्तेमाल किसी के विचार या राय पर सहमति दिखाने के लिए किया जाता है।
0: तो आप भी सुनिए और साथ साथ बोलने का अभ्यास कीजिए।
1: होंतो देसु ने।
3: और अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
5: कवाई, मिन्ना गोहान ओ तबेते इमास। होंतो नी कवाई ने। ओइदे ओइदे। वाताशी वा कोनो को गा सुकी। वाताशी वा कोनो नेको गा सुकी देस।
6: नेको काफे त्ते रिलैक्स देकिरु यो ने।
5: होंतो देसु ने।
7: マイクと一緒にポップカルチャ
0: ー。अब हम लेकर आए हैं अंश माइक के साथ पॉप संस्कृति, जिसमें आज हम बताएंगे जापान में तरह तरह के दिलचस्प कैफे के बारे में।
3: जापान में ऐसे बहुत सारे कैफे बन गए हैं जहां केवल खाना पीना ही मुख्य आकर्षण नहीं है। ऐसा ही एक उदाहरण है कैट कैफे, जिसका आज के पाठ में जिक्र है।
0: जिन लोगों को उल्लू या खरगोश पसंद हैं, वे उल्लू या खरगोश कैफे में जा सकते हैं। आपकी जापानी भाषा बहुत अच्छी ना भी हो तो भी आप ऐसी जगह नए दोस्त बना सकते हैं, क्योंकि वहां आए सारे ग्राहकों की रुचि एक जैसी होती है।
3: मेड कैफे थोड़े अलग होते हैं। वहां खाना परोसने वाली लड़कियां फ्रेंच मेड जैसे कपड़े पहनती हैं और ग्राहकों को मालिक कहकर संबोधित करती हैं।
0: इसके अलावा जापान में आशी यू कैफे भी हैं, जहां आप गर्म पानी में पैर डालकर बैठ सकते हैं। प्लैनेटेरियम यानी तारामंडल कैफे भी हैं, जहां आप चाय पीते हुए सितारों की दुनिया में खो सकते हैं।
3: इसके अलावा एनीमे और गेम्स पर आधारित कैफे तो हैं ही।
0: तो आप भी जापान में अपना मनपसंद कैफे जरूर ढूंढिएगा।
3: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में अपनी नापसंद बताना सीखेंगे। तब तक के लिए सायोनारा।

ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं और अब कुछ मजीद खबरें। कुमामोतो प्रिफेक्चर की हुकूमत का कहना है कि 28 जुलाई को आने वाले शदीद जल्जले के नतीजे में 38 हलाकतों की तस्दीक हो चुकी है। प्रिफेक्चर के डिजास्टर रिस्पॉन्स हेडक्वार्टर्स ने मैग्नीट्यूड 7.1 के जल्जले से होने वाले नुकसान के आदाद शुमार जारी किए हैं।

0: इनकी तस्दीक जुमेरात की सुबह 7:30 बजे तक हो चुकी थी। इतवार के बाद से हलाकतों की तादाद में कोई तब्दीली नहीं आई है। हुकाम का कहना है कि इन आदादोशुमार में एक ऐसा शख्स भी शामिल है जिसके बारे में शुबा है कि वह आफत के बाद की वजूहात से जान की बाजी हार गया। आदादोशुमार से मालूम हुआ है कि 6,899 अफराद प्रीफेक्चर के 130 इनखलाई पनाहगाहों में मुकीम हैं। ईरान और ओमान आबनाए हुर्मस में जहाजरानी के रास्ते पर एक मुहायदे के करीब हैं। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बुकाई ने बुध के रोज कहा कि वो एक मुश्तरका बयान को हतमी शक्ल दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि फ्रिकैन रूट के जोग्राफियाई मुतनासिक यानी हदूद अरबा पर समझौते पर पहुंच गए हैं, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि मखसूस तीसरे फरीक इस अमल में रुकावट न डालें। बुकाई ने कहा कि ईरान ने तकनीकी सलामती और दीगर अमूर का जायजा लिया है। उन्होंने आबनाई की बंदिश का जिम्मेदार अमरीका और इसराइल को ठहराते हुए कहा कि उनकी फौजी जारहियत का नतीजा है। तर्जुमान ने कहा कि सिर्फ ईरान और ओमान के दरमियान ये समझौता आबनाई में महफूज जहाजरानी को यकीनी नहीं बना सकता, क्योंकि अमरीका अब भी सलामती के लिए खतरा है। अमरीका चीन पर तिजारती पाबंदियों को बढ़ाता आया है और अब बीजिंग में हुकाम का कहना है कि वो जवाबी इकदाम कर रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया कि वो अमरीका के लिए ड्रोन्स पर बरामदी कंट्रोल सख्त कर रहे हैं। हुकाम ने बुध को जाब्तों के बारे में ये ऐलान किया। उन्होंने कहा कि ड्रोन्स कलीदी पुर्जाजात और मुतालिका टेक्नोलॉजी समेत सिविलियन और फौजी दोनों शोबों में काबिल इस्तेमाल बावर की जाने वाली बरामदात को सख्त निगरानी का सामना करना पड़ेगा। बीजिंग ने 6 ऐसी अमरीकी तंजीमों पर भी पाबंदियां आयद की हैं जिन पर उसने चीन के सिंकियांग विगोर नीम खुद मुख्तार इलाके पर गैर कानूनी अमरीकी पाबंदियों की हिमायत करने का इल्जाम लगाया है। इसके नतीजे में इन कंपनियों के चीनी तंजीमों और अफराद के साथ कारोबार करने पर पाबंदी लग गई है। चीनी वजारत तजारत के तर्जुमान ने जोर देकर कहा कि ये इकदाम मजमुई तौर पर महदूद रखे गए हैं और अमरीका से इसरार किया कि वो अपनी पाबंदियां वापस ले।
1: इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें खत्म हुईं।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समय अनुसार 6 अगस्त बृहस्पतिवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वरुण तोमर से सुने समाचार। हिरोशिमा में बृहस्पतिवार को अणु बमबारी की 81वीं बरसी पर वार्षिक शांति सभा आयोजित की गई। जापान भर में लोग पीड़ितों की याद में मौन प्रार्थनाएं कर रहे हैं। 1945 की सुबह 8:15 बजे अमेरिका द्वारा बम गिराए जाने पर हिरोशिमा सन्नाटे में डूब गया था। विस्फोट से उत्पन्न ताप और विकिरण ने शहर को तबाह कर दिया था और साल खत्म होने तक अनुमानित 1,40,000 लोगों की मौत हो गई थी। जीवित बचे लोगों में से कई विकिरण के संपर्क में आने से कैंसर और अन्य संबंधित बीमारियों से ग्रस्त हो गए। प्रधानमंत्री ताकायची सानाए और रिकॉर्ड 121 देशों व क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने बृहस्पतिवार की सभा में भाग लिया। हिरोशिमा महापौर मात्सुई काजुमी ने शांति उद्यान के स्मारक पर अणु बम पीड़ितों के नामों की ताज़ा सूची रखी। पिछले 12 महीनों में जिन 4,393 लोगों की मृत्यु हुई या जिनकी मृत्यु की पुष्टि हुई उनके नाम जोड़ने के बाद अब इस सूची में कुल 353,639 नाम हैं। मात्सुई ने परमाणु अस्त्र उन्मूलन का आह्वान करते हुए एक शांति घोषणा पत्र प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, विश्व के नीति निर्धारकों से नागरिक समाज परमाणु अस्त्रों के तत्काल उन्मूलन की मांग करता है। आप हमें कब तक निराश करते रहेंगे? आप निश्चित रूप से जानते हैं कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल मानवता के लिए विनाशकारी साबित होगा और परमाणु अप्रसार व निरस्त्रीकरण की दिशा में प्रगति केवल बहुपक्षीय प्रयासों से संभव है। परमाणु हथियार संपन्न देशों के नेतागण, परमाणु निरस्त्रीकरण की प्राथमिक जिम्मेदारी आप ही की है। आपको निश्चित रूप से मिसाल पेश करने की जरूरत को समझना चाहिए। प्रधानमंत्री ताकायची ने भी सभा को संबोधित करते हुए कहा, जापान 3 गैर परमाणु सिद्धांतों का दृढ़तापूर्वक पालन करता है और युद्ध में अणु बमबारी झेलने वाला एकमात्र देश होने के नाते वो परमाणु अस्त्र मुक्त विश्व की दिशा में निरंतर प्रयासरत रहेगा। यही हमारी मुहिम है। आज वैश्विक सुरक्षा का माहौल लगातार गंभीर होता जा रहा है। हाल ही में परमाणु अप्रसार संधि समीक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसमें हमने देखा कि परमाणु अस्त्र मुक्त विश्व की राह आसान नहीं है, लेकिन यही कारण है कि हमें आगे बढ़ते रहना होगा। जापान सरकार ने अप्रैल 2027 से 2 साल के लिए खाद्य पदार्थों पर उपभोग कर को घटाकर 1% करने का निर्णय लिया है। इस समय यह कर 8% है। बुधवार को कैबिनेट की असाधारण बैठक में इस कटौती को मंजूरी दी गई। उपभोग कर को घटाकर 1% करने के अलावा निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोगों को अलग अलग भत्ते भी दिए जाएंगे ताकि उपभोग कर को एक तरह से शून्य बनाया जा सके। नीति में कहा गया है कि सरकार आवश्यक धनराशि जुटाने के लिए सभी खर्च और राजस्व स्रोतों की समीक्षा करेगी। वो घाटे की भरपाई के लिए बंधपत्रों पर निर्भर नहीं रहेगी। सरकार वित्त वर्ष 2027 का बजट तैयार करने के दौरान किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहती है। प्रधानमंत्री ताकायची सानाए ने बुधवार को पत्रकारों से कहा, हम सभी विशेष खातों, सरकारी निधियों और इसी तरह की चीज़ों की नए सिरे से समीक्षा करेंगे। मुझे विश्वास है कि इन सुधारों के माध्यम से हम आवश्यक धनराशि जुटा सकते हैं। जापान कारोबारी महासंघ केईदान रेन के प्रमुख त्सुई योशिनोबु ने पत्रकारों को बताया कि कर कटौती से सामाजिक सुरक्षा निधि पर असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार को आम जनता के दृष्टिकोण को ध्यान में रखना चाहिए और जनचिंताएं दूर करने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को वैकल्पिक राजस्व स्रोत स्पष्ट करने चाहिए और अपने वायदे के अनुसार कर कटौती का ये उपाय 2 साल बाद वापस ले लेना चाहिए।

ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। कुमामोतो प्रीफेक्चर की सरकार का कहना है कि उसने 28 जुलाई को आए शक्तिशाली भूकंप में 38 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है। प्रीफेक्चर के आपदा प्रतिक्रिया मुख्यालय ने आंकड़े जारी किए हैं, जिनमें बताया गया है कि 7.1 की तीव्रता के भूकंप से बृहस्पतिवार सुबह 7:30 बजे तक कितने नुकसान की पुष्टि की जा चुकी थी। मृतकों की संख्या में रविवार से कोई बदलाव नहीं है। अधिकारियों के अनुसार इनमें से एक की मौत आपदा पश्चात के कारणों से होने का संदेह है। आंकड़ों से पता चलता है कि प्रीफेक्चर के 130 आश्रय स्थलों में 6,899 लोग रह रहे हैं। ईरान और ओमान होर्मुज जलडमरू मध्य में नौवहन मार्ग पर समझौते के करीब पहुंचने वाले हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने बुधवार को कहा कि संयुक्त वक्तव्य को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने मार्ग के भौगोलिक निर्देशांकों पर सहमति बना ली है, बशर्ते कि कोई तीसरा पक्ष इस प्रक्रिया में बाधा न डाले। बागई ने कहा कि ईरान ने तकनीकी सुरक्षा और अन्य मुद्दों की समीक्षा की है। उन्होंने होर्मुज के बंद होने के लिए अमरीका और इसराइल को दोषी ठहराते हुए कहा कि ये उनकी सैन्य आक्रामकता का परिणाम है। प्रवक्ता ने कहा कि ईरान और ओमान के बीच ये समझौता जलडमरू मध्य में नौवहन सुरक्षा अकेले सुनिश्चित नहीं कर सकता, क्योंकि अमरीका अब भी खतरा बना हुआ है। अमरीका चीन पर लगने वाले व्यापार प्रतिबंधों का दायरा बढ़ा रहा है। इसके जवाब में चीन के अधिकारियों का कहना है कि वो भी जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। पेचिंग ने घोषणा की है कि वो अमरीका भेजे जाने वाले ड्रोन विमानों पर निर्यात नियंत्रण को और

0: और उन्होंने अमेरिका से अपने प्रतिबंध वापस लेने का आग्रह किया। इसी के साथ एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
1: ये है एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें एनएचके वर्ल्ड जापान।

0: NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 23वें पाठ में अपनी पसंद बताना सीखेंगे।
1: ताम वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा है। वो होक्काइडो घूमकर टोक्यो वापस आ चुकी है। टोक्यो में वो अपने दोस्तों आयाका और माइक के साथ एक कैट कैफे में आई है। माइक अमरीकी है और जापान की पॉप संस्कृति के बारे में बहुत कुछ जानता है।
0: कैट कैफे ऐसी दुकानें होती हैं जहां आप चाय या कॉफी का आनंद लेते हुए बिल्लियों के साथ खेल सकते हैं।
1: तो आइए सुनते हैं 23वें पाठ की बातचीत।
2: ご飯を食べています。本当にかわいいね。おいでおいで。私はこの子が好き。私はこの猫が好きです。
3: 猫カフェってリラックスできるよね。
2: 本当ですね。
0: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं। पहले ताम ने बिल्लियों को देखते हुए कहा,
2: कवाई,
1: कितनी प्यारी हैं।
2: मीना गोहान ओ तबेते इमासु,
1: सब खाना खा रही हैं।
0: फिर आया का बोली,
2: होंतो नी कवाई ने,
1: सचमुच प्यारी हैं।
0: उसके बाद आया का ने बिल्लियों को आवाज लगाई,
2: ओइदे ओइदे,
1: इधर आओ इधर आओ।
0: आया का ने अपने पास आई बिल्ली को पुचकारते हुए कहा,
2: वाताशी वा कोनो को गा सुकी,
1: मुझे ये वाली पसंद है।
0: फिर ताम ने दूसरी बिल्ली को सहलाते हुए कहा,
2: वाताशी वा कोनो नेको गा सुकी देसु,
1: मुझे ये बिल्ली पसंद है।
0: माइक भी माहौल का आनंद ले रहा था। वो बोला,
3: नेको कैफे ते रिलैक्स देकिरु योने,
0: कैट कैफे आकर बहुत सुकून मिलता है ना।
1: तब ताम ने जवाब दिया,
2: होंतो देसु ने,
1: सही कहा।
0: कैट कैफे में आमतौर पर अलग अलग तरह की बिल्लियां होती हैं। आप भी उनमें से अपनी मनपसंद बिल्ली के साथ खेल सकते हैं।
1: आज का मुख्य वाक्य है,
2: वाताशी वा कोनो नेको गा सुकी देसु,
1: यानी मुझे ये बिल्ली पसंद है। ये वाक्य याद करके आप अपनी पसंद बता सकेंगे।
0: इस वाक्य में
4: वाताशी
0: का अर्थ है मैं और उसके बाद लगा है वा, जो विषय सूचक कारक है। उसके बाद आया है
4: नेको
0: यानी बिल्ली।
4: कोनो नेको
0: का अर्थ है ये बिल्ली।
1: आगे है
4: स्की देस,
1: जिसमें से
4: स्की
1: एक ना विशेषण है और उसका मतलब है पसंद।
0: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि जो चीज पसंद हो उसके नाम के बाद कारक गा लगाते हैं और उसके बाद बोलते हैं
4: स्की देसु।
0: अगर आपको बिल्लियां यानी
4: नेको
0: पसंद हैं तो वाक्य बनेगा
4: नेको गा स्की देसु।
1: ध्यान रखिएगा कि नेको ओ स्की देसु बोलना सही नहीं है।
4: स्की देसु
1: का
4: स्की

0: यानी पसंद क्रिया नहीं है, ना विशेषण है। विशेषण जिस चीज की विशेषता बताता है उसके नाम के बाद कारक ओ नहीं गा लगाया जाता है।
1: अगर हम आयाका की पंक्ति पर ध्यान दें तो उसने भी कहा था वाताशी वा कोनो को गा सुकी, जिसका अर्थ है मुझे ये वाली पसंद है।
0: करीबी मित्र से बात करते समय आप अंत का
2: डेस
0: छोड़ सकते हैं और
2: स्की डेस
0: की जगह सिर्फ
2: स्की
0: बोल सकते हैं।
1: एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि ताम और आयाका दोनों ने अपने वाक्य में वाताशिवा यानी मैं लगाया, लेकिन हम आपको पिछले पाठों में बता चुके हैं कि अगर संदर्भ स्पष्ट हो तो ये शब्द बोलने की जरूरत नहीं होती है।
0: यहाँ ताम और आयाका अपनी अपनी पसंद बता रही हैं और इस बात पर जोर दे रही हैं कि उनकी पसंद एक दूसरे से अलग है। जैसे ताम ने कहा
2: वाताशी वा कोनो नेको गा स्की देस,
0: यानी मुझे ये बिल्ली पसंद है। यहाँ उसने खास तौर से कहा
2: वाताशी वा।
1: तो अब उच्चारण का अभ्यास करते हैं, सुनिए और दोहराइए।
2: स्की देस कोनो नेको गा स्की देस।
0: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें मनपसंद खाने की चीज की बात हो रही है।
3: तबेमोनो वा नानी गा स्की देसु का?
4: सुशी गा स्की देसु।
1: इस बातचीत में पहले पुरुष ने पूछा
3: तबेमोनो वा नानी गा स्की देसु का,
1: खाने में क्या पसंद है।
0: यहाँ
2: तबेमोनो
0: का अर्थ है खाना या खाने की चीज। उसके बाद लगा है विषय सूचक कारक वा।
2: नानी
0: एक प्रश्नवाचक शब्द है जिसका अर्थ है क्या। तो
2: नानी गा स्की देसु
0: का अर्थ है क्या पसंद है।
1: महिला ने उत्तर दिया
4: सुशी गा स्की देसु,
0: सुशी पसंद है।
1: सुशी एक जापानी व्यंजन है जो पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो रहा है।
0: तो अब ये बातचीत दोबारा सुनिए और उत्तर दोहराइए।
2: तबेमोनो वा नानी गा स्की देसु का? सुशी गा स्की देसु।
1: अब वाक्य बनाने का अभ्यास करते हैं। मान लीजिए आपको लोकप्रिय जापानी संगीत यानी जे पॉप पसंद है, तो ये बात कैसे बताएंगे। जे पॉप को जापानी में कहते हैं
2: जे पॉप।
1: तो कोशिश कीजिए
4: जे पॉप गा स्की देसु।
0: अब मान लीजिए आपको जापानी चित्र कथाएं पसंद हैं, जिन्हें जापानी भाषा में कहते हैं
2: मांगा।
0: तो अपनी पसंद बताने की कोशिश कीजिए
3: मांगा गा स्की देसु।
1: अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो ताम की पंक्ति है, आप भी याद कर लीजिए।
4: होंतो देसु ने।
2: होंतो
0: है
2: होंतो,
0: यानी सही कहा का लघु रूप।
2: होंतो देसु ने
0: का भी मतलब है सही कहा। इस वाक्य का इस्तेमाल किसी के विचार या राय पर सहमति दिखाने के लिए किया जाता है।
1: तो आप भी सुनिए और साथ साथ बोलने का अभ्यास कीजिए।
2: होंतो देसु ने।
0: और अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
5: कवाई मिन्ना गोहान ओ तबेते इमासु।
6: 本当に可愛いね。おいでおいで。私はこの子が好き。私はこの猫が好きです。猫カフェってリラックスできるよね。本当ですね。バイクと一緒にポップカルチャー。
1: अब हम लेकर आए हैं अंश माइक के साथ पॉप संस्कृति, जिसमें आज हम बताएंगे जापान में तरह तरह के दिलचस्प कैफे के बारे में।
0: जापान में ऐसे बहुत सारे कैफे बन गए हैं जहां केवल खाना पीना ही मुख्य

0: आकर्षण नहीं है। ऐसा ही एक उदाहरण है कैट कैफे, जिसका आज के पाठ में जिक्र है।
1: जिन लोगों को उल्लू या खरगोश पसंद हैं, वे उल्लू या खरगोश कैफे में जा सकते हैं। आपकी जापानी भाषा बहुत अच्छी ना भी हो तो भी आप ऐसी जगह नए दोस्त बना सकते हैं, क्योंकि वहां आए सारे ग्राहकों की रुचि एक जैसी होती है।
0: मेड कैफे थोड़े अलग होते हैं। वहां खाना परोसने वाली लड़कियां फ्रेंच मेड जैसे कपड़े पहनती हैं और ग्राहकों को मालिक कहकर संबोधित करती हैं।
1: इसके अलावा जापान में आशी यू कैफे भी हैं, जहां आप गर्म पानी में पैर डालकर बैठ सकते हैं। प्लेनेटेरियम यानी तारामंडल कैफे भी हैं, जहां आप चाय पीते हुए सितारों की दुनिया में खो सकते हैं।
0: इसके अलावा एनिमे और गेम्स पर आधारित कैफे तो हैं ही।
1: तो आप भी जापान में अपना मनपसंद कैफे जरूर ढूंढिएगा।
0: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
1: अगले पाठ में अपनी नापसंद बताना सीखेंगे। तब तक के लिए सायोनारा।

ये खबरें NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं और अब कुछ मजीद खबरें। कुमामोतो प्रिफेक्चर की हुकूमत का कहना है कि 28 जुलाई को आने वाले शदीद जल्जले के नतीजे में 38 हलाकतों की तस्दीक हो चुकी है। प्रिफेक्चर के डिजास्टर रिस्पांस हेडक्वार्टर्स ने मैग्नीट्यूड 7.1 के जल्जले से होने वाले नुकसान के आदाद शुमार जारी किए हैं। इनकी तस्दीक जुमेरात की सुबह 7:30 बजे तक हो चुकी थी। इतवार के बाद से हलाकतों की तादाद में कोई तब्दीली नहीं आई है। हुकाम का कहना है कि इन आदाद और शुमार में एक ऐसा शख्स भी शामिल है जिसके बारे में शुबा है कि वह आफत के बाद की वजूहात से जान की बाजी हार गया। आदाद और शुमार से मालूम हुआ है कि 6,899 अफराद प्रीफेक्चर के 130 इनखलाई पनाहगाहों में मुकीम हैं। ईरान और ओमान आबनाए हुर्मस में जहाजरानी के रास्ते पर एक मुहायदे के करीब हैं। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बुकाई ने बुध के रोज कहा कि वो एक मुश्तरका बयान को हतमी शक्ल दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि फ्रिकैन रूट के जोग्राफियाई मुतनासिक यानी हदूद अरबा पर समझौते पर पहुंच गए हैं, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि मखसूस तीसरे फरीक इस अमल में रुकावट न डालें। बुकाई ने कहा कि ईरान ने तकनीकी सलामती और दीगर अमूर का जायजा लिया है। उन्होंने आबनाई की बंदिश का जिम्मेदार अमरीका और इसराइल को ठहराते हुए कहा कि उनकी फौजी जारहियत का नतीजा है। तर्जुमान ने कहा कि सिर्फ ईरान और ओमान के दरमियान ये समझौता आबनाई में महफूज जहाजरानी को यकीनी नहीं बना सकता, क्योंकि अमरीका अब भी सलामती के लिए खतरा है। अमरीका चीन पर तिजारती पाबंदियों को बढ़ाता आया है और अब बीजिंग में हुकाम का कहना है कि वो जवाबी इकदाम कर रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया कि वो अमरीका के लिए ड्रोन्स पर बरामदी कंट्रोल

0: होगा स्कीडिस।
1: मुझे बिल्ली पसंद है, के लिए क्या नेको स्कीडिस भी खा जा सकता है?
0: जी नहीं, स्कीडिस में स्की यानी पसंद फेल नहीं बल्कि ना इसमें सिफत है। मकसद ये मफूल को जाहिर करने के लिए इसमें सिफत के साथ हर्फ जार ओ नहीं बल्कि गा इस्तेमाल होता है।
1: अच्छा, मैं समझ गई। मकालमे में आयाका का जुमला वताशी वा खोनो को गा स्की भी इसी तरह का जुमला है।
0: जी बिल्कुल ठीक। ये मकालमा दोस्तों के दरमियान है, इसलिए आयाका ने आखिरी देस को हजफ कर दिया है और स्की देस की बजाय सिर्फ स्की कहा है।
1: अच्छा, वताशी वा भी तो अक्सर हजफ कर दिया जाता है, लेकिन आज के मकालमे में ताम और आयाका दोनों ने इसका इस्तेमाल किया है, तो ऐसा क्यों है?
0: दोनों ने अपनी अपनी पसंद का इजहार किया है जो दूसरों से और एक दूसरे से मुख्तलिफ है। मसलन ताम ने अपने जुमले वाताशी वा कोनो नेको गा स्की देस में वाजे तौर पर वाताशी वा का इस्तेमाल किया है। ये एक तरह से अपनी बात पर जोर देने के लिए है, यानी दूसरों की पसंद तो अलग हो सकती है मगर मुझे ये बिल्ली पसंद है।
1: तो सामीन, ये जुमला तीन मुख्तलिफ अंदाज में सुनिए और दोहराइए।
2: स्की देस, कोनो नेको गा स्की देस, वाताशी वा कोनो नेको गा स्की देस।
1: जी सामीन, यकीनन आपने जुमलों को उम्दगी से दोहरा लिया होगा।
0: अब अपनी पसंद के इजहार से मुतालिक एक मकालमा सुनिए।
3: तबेमोनो वा नानी गा स्की देस का?
4: सुशी गा स्की देस।
0: और अब मकालमे की तशरीह।
3: तबेमोनो वा नानी गा स्की देस का?
1: खाने में क्या पसंद है?
0: तबेमोनो खाने की किसी चीज को कहते हैं, और चूंकि ये गुफ्तगू का बुनियादी मौजू है इसलिए इसके साथ हर्फ जार वा लगाया गया है। नानी तो आप पहले भी सीख चुके हैं, इसके मायनी है क्या। नानी गा स्की देस का के मायनी हुए क्या पसंद है।
4: सुशी गा स्की देस,
1: सुशी पसंद है।
0: सुशी अब दुनिया भर में मशहूर और मकबूल जापानी खाना है।
1: तो सामीन सुनिए और दोहराइए।
2: तबेमोनो वा नानी गा स्की देस का? सुशी गा स्की देस, सुशी गा स्की देस।
1: जी सामीन, यकीनन आपने जुमलों को उम्दगी से दोहरा लिया होगा।
0: अब कुछ और पसंदीदा चीजें बताने की मशक करते हैं। अगर आपको जे पॉप पसंद है तो ये बात कैसे कहेंगे? जे पॉप का जापानी तलफ्फुज है
2: जे पॉप, जे पॉप।
0: तो सामीन कोशिश करें।
4: जे पॉप गा स्की देस, जे पॉप गा स्की देस।
0: और अगर आपको कॉमिक्स या कार्टून पसंद है तो इसका इजहार कैसे करेंगे? कॉमिक्स की जापानी है
2: मांगा, मांगा।
3: मांगा गा स्की देस, मांगा गा स्की देस।
0: और अब इजाफी मालूमात का कॉर्नर। आज का जुमला मकाल में से ताम का जुमला है, इसे इसी तरह याद कर लें।
4: होंतो देसु ने।
0: होंतो दरअसल होंतो यानी वाकई की मुख्तसर शक्ल है। होंतो देसु ने यानी वाकई ऐसा ही है, किसी की बात से इत्तेफाक करने के लिए इस्तेमाल होता है। देसु ने का आखिरी ने भी इत्तेफाक करने के लिए ही इस्तेमाल होता है।
1: तो अब इसे मुख्तलिफ अफराद की आवाज में सुनिए।
5: होंतो देसु ने,
6: होंतो देसु ने,
5: होंतो देसु ने।
1: सामीन अब आपकी बारी है, तो सुनिए और दोहराइए।
2: होंतो देसु ने।
0: अब आज का मकालमा एक बार फिर सुनते हैं। उन हिस्सों पर खुसूसी ध्यान दें जिनमें आयाका और ताम अपनी अपनी पसंद का इजहार करती हैं।
7: कवाई, मिन्ना गोहान ओ तबेते इमास।
8: होंतो नी कवाई ने। ओइदे ओइदे। वाताशी वा कोनो को गा स्की।
9: वाताशी वा कोनो नेको गा स्की देस।
10: नेको काफे ते रिलैक्स देकिरु यो ने।
7: होंतो देसु ने।
11: माइक तो इश्चो नी पॉप कल्चर।
1: अब माइक के साथ पॉप कल्चर का कॉर्नर। आज का मौजू है जापान के दिलचस्प कैफे।
0: आजकल मुख्तलिफ अकसाम के ऐसे कैफे भी खुल रहे हैं जहाँ खाने पीने के अलावा दीगर दिलचस्पियाँ भी हैं। मकालमे का मकाम कैट कैफे भी ऐसी ही एक मिसाल है। जानवरों वाले कैफे में बिल्लियों के अलावा उल्लुओं या खरगोशों वाले कैफे भी लोगों में मकबूल हैं।